आवे साई वलिकार तू सदा सलामत निरंकार असंख नाव संख थाव अगम अगम असंख लो असंख कहे सिर भार होए।

नाहत जुग जुग एको वेश भुगत ज्ञान दया भंडारण घट घट वाजे नाद आप नाथ नाथी सब जाकी रिद सिद्ध

जोर ना जुगती छुटै संसार जिस हाथ जोर कर वेखे सोए नानक उत्तम नीच ना कोए राती रुती चित्ती वार पवन पानी अग्नि पाताल तिस विच धरती थाप रखी धर्मसाल तिस विच जी जुगत के रंग तिनके नाम अनेक अनंत करमी करमी होए विचार सच्चा आप सच्चा दरबार तिथे सोहन पंच परवान।

अजीब दास्तां है ये, कहां शुरू कहां खत्म। दिस प्यारा वाला गाना इन द वोकल्स ऑफ लता मंगेशकर फ्रॉम द मूवी दिल अपना और प्रीत पराई। आई थिंक मीना कुमारी वाज सो प्रिटी इन दिस सॉन्ग, यू नो वो जो बोट पे एंड राजकुमार एंड नादरा का वो अंदाज, लवली सॉन्ग। वन मोर ट्रैक दिस आवर एंड आई विल बी विद यू नेक्स्ट आवर। दिस इज लाइक

0: Japan Tour now. Visit starters.co.uk or call 0208-900-2323.
1: Janan. For 15 years, Janan has been part of your story. Across generations, across cultures, across every style. For everyday moments, special occasions, celebrations and new beginnings. Because style has no age, no background and no boundaries. 15 years of Janan. For you, for us and for everyone. The Janan and J-Dot anniversary sale up to 70% off is now on. Visit our stores nationwide, including London, or shop the sale online at janan.com and junaidjamshed.co.uk.
2: वेडिंग सेलिब्रेशंस कॉर्पोरेट इवेंट्स रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए फॉरन का फोन मिलाएं 02088390880 और विजिट रागासन.com लोकेशन डिजाइन मैनेजमेंट या केटरिंग रागासन

0: दिल कब हमर करे पुकार. दिस प्यारा वाला गाना इन द वोकल्स ऑफ रफी साहब फ्रॉम द मूवी तेरे घर के सामने.
1: फील गुड ट्रैक brought to you by Dairy Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
1: Ye hai Laika Radio.
3: Laika Radio.
1: Tasty track of the hour brought to you by Coca Noodles.

0: मुझे नींद ना आए, मुझे चैन ना आए. दिस सुपर हिट सॉन्ग फ्रॉम द मूवी दिल एंड ऑफ कोर्स आर आर्टिस्ट ऑफ द वीक, जिन्होंने ये म्यूजिक कंपोज किया है, आनंद मिलन. आई मीन आनंद मिलन साहब के गाने इतने सारे थे, सो आई वाज जस्ट गेटिंग कंफ्यूज कि मैं कौन सा गाना चूज करूं. बट देन माधुरी दीक्षित हैपेंस टू बी माय फेवरेट, सो आई सेड चलो ये वाला गाना प्ले करते हैं. आर आर्टिस्ट ऑफ द वीक आनंद मिलन साहब.
1: Feel good track brought to you by Dairy Valley.
2: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: इस प्यारे से गाने के बाद वन मोर लवली ट्रैक दिस आवर एंड पता ही नहीं चला इट्स नाउ टाइम फॉर मी टू से बाय. वेल हम है राही प्यार के फिर मिलेंगे चलते चलते. आई होप आपने ये गाने एंजॉय किए हो. अप नेक्स्ट इज रवि शर्मा. गिव हिम लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव एंड कीप लिसनिंग टू लाइक अ गोल्ड.
1: Leica Radio Punjabi, Leica Gold 2, now available on the Leica Radio mobile app and Alexa.

Good morning. स्वागत है संगीत प्रेमियों का लाइका गोल्ड पर गोल्डन गीतों के खजाने में।

0: सोमवार वर्ष 2026 के अक्टूबर महीने की 5 तारीख और वक्त हमारी आपकी मुलाकात का यानी ब्रिटिश घड़ियों में 10:05। कैसा था आपका वीकेंड? उम्मीद है भाई बहुत सुहाना रहा होगा। कुछ व्यस्त भी रहे होंगे, कुछ अस्त-व्यस्त भी रहे होंगे, मस्त भी रहे होंगे। भाई लाइका गोल्ड साथ होता है ना, लाइका रेडियो नेटवर्क के सभी स्टेशंस जो हैं आपका दिल बहलाने के काम में जुटे रहते हैं 24 घंटे सातों दिन। काजल छुट्टी पर है पर वीर बहुत बढ़िया ड्यूटी निभा रहे थे। माय नेम इज रवि शर्मा, दोपहर बैठ 1 बजे तक मैं आपकी सेवा में हाजिर हूं बहनों भाइयों। और लीजिए साहब, यहां स्टूडियो में आकर के सीट संभालते ही हमारे श्रोता भी हमारे स्क्रीन को संभाल लेते हैं। धड़ाधड़ मैसेजेस आने शुरू हो गए हैं। थैंक यू वेरी मच। ये सप्ताह, ये दिन, ये पल आपके लिए शुभ हो, मंगलमय हो। शायरी से शुरुआत करें? अरे शुरू करें साहब, शायरी निकल आएगी अपने आप।
1: Let's return to the biggest hits back to back. This is Leica Radio, broadcasting across the Midlands on DAB Digital Radio with a refreshing mix of Bollywood classics and latest chart toppers. Download the Leica Radio mobile app and listen wherever you are in the world.

0: बैक टू बैक संगीत सुना, एंजॉय किया और वो आखिर में भाई जो दूसरा गीत इसमें तो अभी खत्म करते करते लाला जी याद आ गए हमें। एक बार सच्ची लाला जी की फैमिली नाराज हो गई हमसे, कहती आप हमारे पापा के नाम का गाना क्यों लगाती है। मैंने कहा कौन सा गाना, कहते वो जो आगरे का लाला अंग्रेजी दुल्हन लाया रे। भाई गीत फिल्मों में कई बार क्या होता है कि ऐसे गीत होते हैं वो सिचुएशन पर आधारित होते हैं, पर वो कभी कभी सीधे जाके किसी श्रोता को ऐसे लगते हैं और वो ये मान लेते हैं कि ये तो मेरे लिए लगाया गया, ये वहां किस स्टूडियो की कोठरी में बैठा जो ना हमें ताने सुना रहा है, मैंने दिंदा पिया है कहा थे एक जड़िया खरी खरी सुना रहा, मैंने पता है कि दे नाते ला रहा गाना तू। मेरे भाई ऐसा कोई ख्याल नहीं होता, ध्यान नहीं होता, कोई नाम नहीं होता, कोई पहचान नहीं होती। गीत कंप्यूटर पे आते हैं, हम आपको सुनवाते हैं, लेकिन कुछ लोग उन्हें दिल से लगाते हैं, उससे भी ज़्यादा लगाते हैं। कोई कोई तो साहब पुलिस में जाके शिकायत कर देते हैं, जी वो देखो वो आदमी हमारे नाम के गाने लगा रहा है, हमें वो सुना रहा है खरी खरी। ऐसा कुछ भी नहीं है बहन भाइयों, लेकिन गीतों को आप एंजॉय करें इसलिए बजाए जाते हैं, इसलिए नहीं कि आप दुखी हों। मकसद है आपका मनोरंजन करना भाई, दिल से सुने, दिल से कहें, लेकिन दिल से लगाएं ना। Got it? Yes!
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यूके अब भी अच्छा रेट दे रहे हैं और आपको याद दिला रहे हैं भाई पैसे भिजवाइए अपनों को। भारत में अगर पैसा भिजवाना चाहते हैं तो आज का रेट हम बताते हैं। फॉर वन पाउंड दे आर गिविंग 127 रुपीज एंड फाइव पैसे, पांच पैसे, 127 रुपए पांच पैसे का रेट चल रहा है। यू कैन ट्रांसफर वाया ब्रांच ऑनलाइन और बाई यूजिंग द योनो एसबीआई यूके मोबाइल ऐप। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
1: स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यूके ऑफर्स सेविंग्स प्रोडक्ट्स, बिजनेस बैंकिंग, बाय टू लेट मॉर्गेजेस एंड सेफ डिपॉजिट लॉकर्स। विजिट sbiuk.statebank टू लोकेट योर नियरेस्ट ब्रांच। टीज एंड सीज अप्लाई। गेट ऑल द लेटेस्ट ट्रैवल अपडेट्स फॉर द मिडलैंड्स एट ब्रेकफास्ट एंड ड्राइव। This is the Leica Radio Network, the largest Asian commercial radio network in the UK, broadcasting in Greater London, Greater Manchester and the Midlands. Tune in wherever you are in the world by downloading the Leica Radio mobile app. Listen live or listen back to your favorite shows or log on to leicaradio.com and listen via the website. If you like what you hear, do tell us. Email us info@leicaradio.com or you can advertise on the Leica Radio Network by emailing sales@leicamedia.co.uk.
2: ये है लाइका रेडियो।
3: Make your celebration special with Falcon Festive Offers.
4: Elephant Medium Atta, 25 kilos, just 13.79. Layla Gold Basmati Rice, 10 kilos, only 12.99. Bikaji Namkeen, 200 grams, pick up 2 for just 1. And Tilda Pure Basmati Rice, 20 kilos, 32.99 with a free case of KTC Chickpea Tins.
5: Or shopping ke saath paaiye Star Tours ke holiday packages aur Malabar Gold and Diamonds ki taraf se gold coins jeetne ka mauka. Falcon Cash and Carry. Visit 82A Syston Street, Leicester, LE12JU, 2A Rowlett's Hill, Leicester, LE54UN, or Falcon Supermarket, 135 Carlton Road, Nottingham, NG32FN. Happy Diwali!
6: Get ready, UK! Snill Grover is coming live with Gutti, Dr. Mashur Gulati, Rinku Babi, and more surprises on the night.
7: Expect music, madness, family entertainment, and non-stop laughter. Sunil Grover Live UK Tour 2026, happening on the 29th of October at the Over Arena Wembley in London.
6: 31st October, Mattioli Arena, Leicester. Produced by ImagineX Global and Tim's Media Productions.
7: Supporting mental health and well-being awareness. Tickets are on sale now via Ticketmaster, Eventbrite and AXS.
6: For more information, contact 07585 801 801. Official radio partner, Leica Radio Network.
7: For 15 years, Jannan has been part of your story. Across generations, across cultures, across every style. For everyday moments, special occasions, celebrations and new beginnings. Because style has no age, no background and no boundaries. 15 years of Jannan. For you, for us and for everyone. The Jannan and J-Dot anniversary sale up to 70% off is now on. Visit our stores nationwide, including London. Or shop the sale online at jannan.com and junaidjamshed.co.uk.
8: Jannan. Passports, tickets, kids' tablets.
9: All packed. But what about our phones? We'll need them for maps, WhatsApp, photos.
8: And checking in with grandma.
9: Exactly. Roaming abroad can get expensive.
8: That's why I got Simsy. Data in 220 plus destinations with 4G and 5G where available.
9: So we can keep our numbers for WhatsApp and bank OTPs?
8: Yep. Flat rate, no bill shock, and ready in just 3 minutes.
9: Holiday sorted.
10: Save an extra 10% with code ROMFREE10. Simsy, powered by Leica Mobile. Check if your phone works at simsy.com. Terms apply.
11: Dubai is an opportunity, so now be a part of it. Create wealth with a small investment every month. Danube Properties Dubai has something for everyone with its ambitious 11-11 initiative, aiming to complete 11 landmark projects in just 11 months. Featuring views, oases, oceans, elites, fashions and sports, there's an opportunity waiting for you. So why wait? Be part of Dubai's growth story. Call the Danube Properties Dubai London office today on 0203 963 5757 to arrange your meeting.

0: सबसे निराला
1: Master Pani Puri or Pani Puri ka Pani.
2: All Mamster products are nut free and made in Canada. Now available at your nearest Asian grocery store.
3: Discover the magic of Switzerland with Mantra Holidays Scenic Swiss Tour from the stunning Swiss Alps to Interlaken, Lucerne, Mount Titlis and more. And this October half term, we've got our lowest price of the year. Call 0203-773-633 or visit mantraholidays.co.uk.
4: तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो
5: आपका नया स्टेशन लाइका रेडियो गजल्स बहुत जल्द आ रहा है
6: फील गुड ट्रैक Brought to you by Dairy Valley.
7: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.
8: तस्वीर बनाता है उंगली से हवाओं में मेरी तरह कोई तेरा वो दीवाना है भाई हमें तो दुनिया वाले आपका दीवाना कहते हैं और पूछोगे तो हम अपने प्यार का अफसाना कहते हैं मगर पूछोगे नहीं तो बताएंगे भी नहीं

0: Good Track. Brought to you by Derry Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: मुझे पता था शर्मा जी आप वहां स्टूडियो में बैठ के क्या करते हैं. I knew that all. कौन कह रहा है ये कौन है भाई? I knew it. This is आप है सुरेखा जी. सुरेखा जी आपने कहां से देखा जी? आपको लगा आप पुलेखा जी नहीं? आई न्यू इट शी सेज. कहती है जब आपने शायरी बोली मैं समझ गई कि ये वाला गीत आ रहा है दीवानों वाला. और जैसे ही ये गीत शुरू हुआ भी नहीं था मुझे ये भी पता था कि आप नहीं रुकेंगे, आप गाएंगे, आप नहीं रह पाएंगे, साथ गाएंगे मुकेश जी के. मैं क्या करूं सुरेखा जी, मैं रोकने की कोशिश करता हूं लेकिन मेरा गाना निकल जाता है. ऐसा मुकेश जी का गाना जब भी आता है आप माने या ना माने हमारे एक वो पोपट साहब हैं वो भी यही करते हैं. वो घर में बैठे वो चाहे किचन में हो, बाथरूम में हो, चाहे वो गैराज में हो, उनका भी गाना निकलता है. मुकेश जी की आवाज दिल से लगा रखी है बचपन से, क्या करें. अब आपको अच्छा लगा सुरेखा जी? मुकेश जी का मेरा छोड़ो. देखो देखो ये धमकी इसमें देखिए, इसमें माँ बहन को बीच में कौन कौन आ रही है. सुरेखा जी गुस्सा ना करें प्लीज. ओके अगली बार नहीं गाऊंगा. मेरा मतलब है अगली से अगली बार, मेरा मतलब है 200-400 बार और गा के फिर छोड़ दूंगा. थैंक यू. और ये वीरेंद्र चौधरी जी कह रहे हैं कि रवि जी आप अपने चिंतन में कभी उस पायलट समीप का जिक्र करेंगे, जरूर करेंगे लेकिन हम पहले ही कर चुके हैं. फिर भी ये तो जिक्र ऐसा है जी इतिहास में लिखा जाएगा स्वर्ण अक्षरों में, भले ही किसी को अच्छा लगे या ना लगे लेकिन सच्चा लगेगा कि जो हुआ है वो हुआ है और उसका जिक्र होगा. सहर जी गोल्ड मॉर्निंग थैंक यू. और ये है हिना जी. मृदु जी, मृदु जी आपने शायरी क्या लिखी है? जिंदगी जब देती है तो एहसान नहीं करती और जब लेती है तो लिहाज नहीं करती. दुनिया में दो पौधे ऐसे हैं जो कभी मुरझाते नहीं और अगर मुरझा गए तो उसका कोई इलाज नहीं. क्या बात मृदु जी, ये ऐसी शायरी कहाँ से जुटा रही हैं आप? हा? आप कहीं रेडियो में प्रेजेंटर की जॉब के लिए अप्लाई तो नहीं करने जा रही हैं? कायक और रवि शर्मा के पेट पे लात मारने की प्रैक्टिस कर रही हैं आप? थैंक यू मृत्यु जी, थैंक यू ऑल भाई जितने श्रोता जुड़ गए हैं सुखी, थैंक यू वेरी मच. और हंसा बोरा जी, जगदीश भूषी जी, वाह कीर्ति, सो नाइस ऑफ यू. भरत गंगाराम, नीलम जी, पम्मी, स्लौमी, मंडा पटेल, एवरीबॉडी थैंक यू वेरी मच.
0: मनोरंजन विद रवि शर्मा.
2: लाइक अ रेडियो नेटवर्क. अब आप रवि शर्मा से आज के प्रमुख समाचार सुनिए. ब्रिटेन के आरएएफ एयरफोर्स एयरबेस से अमेरिका ने अपने सभी बॉम्बर हवाई जहाज हटा लिए हैं. ये वही ब्रिटिश फौजी हवाई अड्डा है जहां 27 सितंबर को हुई एक घटना की जांच काउंटर टेरर पुलिस कर रही है. अमेरिकी विभाग के एक अधिकारी ने कल संडे को इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि एयरबेस पर तैनात सभी अमेरिकी बॉम्बर प्लेन्स को वापस घरेलू ठिकानों पर भेज दिया गया है. हालांकि अमेरिका ने विमानों को हटाने के पीछे कोई खास कारण नहीं बताया है लेकिन सबको मालूम है कि किस लिए वहां से इन हवाई जहाजों को हटाया जा रहा है. अमेरिका का यह फैसला 27 सितंबर की उस घटना के बाद आया है जब ग्लौस्टरशायर में आरएएफ फेयरफोर्ड एयरबेस के पास 3 सस्पिशियस गाड़ियों की सूचना मिलने के बाद पुलिस को अलर्ट किया गया. घटना के सिलसिले में शुरुआत में 5 लोगों को टेररिज्म से जुड़े क्राइम्स के संदेह में गिरफ्तार किया गया था. हालांकि बाद में उन्हें पुलिस जमानत पर रिहा कर दिया गया. इसके बाद ब्रिटिश ईरानी नागरिक छठे व्यक्ति को भी गिरफ्तार किया गया, उसे भी बाद में जमानत पर छोड़ दिया गया। व्हाइट हाल के सोर्सेज ने इस बात से इनकार किया है कि वाशिंगटन का अपने बॉम्बर हवाई जहाजों को हटाने का फैसला फेयरफोर्ड एयरबेस की घटना के जवाब में लिया गया है। इस संदर्भ में भाई और भी जानकारी आ रही है, मजबूत संकेत मिले हैं इस बात के कि इस मामले में ईरान का रोल हो सकता है। कुछ ही समय बाद उसकी घटना के प्रधानमंत्री एंडी बर्नहम ने भी अपने एक बयान में ऐसा कहा था। वेल, यह खबर है आगे और समाचार। ब्राजील में इलेक्शंस में ब्राजील के प्रेसिडेंट चुनाव के पहले राउंड में दक्षिणपंथी यानी राइट विंग उम्मीदवार फ्लाविओ बोलसोनारो की ने मौजूदा राष्ट्रपति और वामपंथी नेता लुइस इनासियो लुला डा सिल्वा को पीछे छोड़ दिया है। हालांकि बोलसोनारो को 50% से ज्यादा वोट नहीं मिले हैं जिसके चलते प्रेसिडेंशियल चुनाव का फैसला होता है, लेकिन अब यह फैसला दूसरे राउंड में होगा। भारत से आने वाली खबरों में कांग्रेस जनता पार्टी के सह संयोजक यानी को ऑर्गेनाइजर सौरभ दास ने कहा है कि सरकार ने उन्हें अभिजीत दीपके, आशुतोष रांका, रत्ना सिंह और पार्टी के अन्य नेताओं को गिरफ्तार करने की योजना बनाई है। सौरभ दास ने यह आशंका कल संडे को देर रात सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखी है। उन्होंने लिखा कि हम हमेशा जेल जाने या इससे भी बुरा कुछ झेलने के लिए तैयार रहते हैं, ये लेकिन बड़ी गलती होगी सरकार की और नौजवान इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। प्रदर्शन यानी प्रोटेस्ट जारी रहने चाहिए। भारत के लोगों को 10 अक्टूबर से सबसे बड़ा आंदोलन शुरू करना चाहिए, भी उन्होंने कहा। अन्य समाचारों में पाकिस्तान का नाम लिए बगैर जयशंकर भारत के विदेश मंत्री ने कुछ कहा है। क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि भारत और रूस के रिश्तों को लेकर के उन्होंने ये बात कही कि दोनों देशों के रिश्तों की नींव 1950 के दशक से ही बहुत मजबूत रही है। 62वीं म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में जयशंकर ने कहा कि बदलते वक्त के साथ भारत रूस रिश्तों का ऐतिहासिक रूप से जो है बड़ा मजबूत संबंध रहा है, खासकर 1950 के दशक से। उन्होंने उस हिस्ट्री को भुलाया नहीं गया है, याद दिलाया कि हमारे लिए सोवियत संघ एक ऐसा देश था जो कई तरह से हमारे साथ खड़ा रहा, जबकि हमारी सिक्योरिटी और हमारी अखंडता पर खतरा मंडरा रहा था। उन्होंने पाकिस्तान का नाम लिए बगैर कहा कि ऐसे वक्त में जब दुनिया के ज्यादातर मुल्क हमारे पड़ोस में एक फौजी शासन की हिमायत करना पसंद कर रहे थे, रूस ही एक ऐसा देश था जिसके साथ हमारे बहुत अच्छे रिश्ते थे, जो हमारे साथ खड़ा था। पाकिस्तान की जेल में बंद फॉर्मर वजीर-ए-आज़म इमरान खान की रिहाई की मांग को लेकर उनके हजारों समर्थक हिमायती राजधानी इस्लामाबाद की ओर मार्च कर रहे हैं। इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी पीटीआई के जो कारकुन थे, ये समर्थकों का यह मार्च संडे को कल खैबर पख्तूनख्वा के लक्की मरवत शहर से शुरू हुआ था। यह शहर इस्लामाबाद से करीब 275 किलोमीटर दूर है। तहरीक इंसाफ की लीडरशिप में हो रहे इस मुजाहरे का, इस प्रोटेस्ट का उद्देश्य सरकार पर इमरान खान की रिहाई के लिए प्रेशर बनाना है। इसी बीच कुछ खबरें मिली हैं, 73 वर्षीय इमरान खान की सेहत को लेकर चिंता बढ़ रही है। उनके परिवार का दावा है कि जेल एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से समय पर इलाज न मिलने के कारण उनकी दाई आंख की ज्यादा रोशनी भी चली गई है। दिल्ली हाई कोर्ट ने आज सोमवार को 2020 के दिल्ली दंगों और 2019 में जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में हुई वॉयलेंस की एसआईटी या स्वतंत्र जांच की मांग करने वाली एप्लीकेशन को खारिज कर दिया है। स्पेन के प्रधानमंत्री पेंड्रो सांचेज ने आज अचानक आम चुनाव कराने का ऐलान कर दिया है। स्पेन में अगला आम चुनाव 2027 की गर्मियों में होना तय था, लेकिन मुल्क में अब 29 नवम्बर यानी अगले महीने 29 नवंबर को आम चुनाव होंगे। दरअसल 87 वर्षीय एक महिला के घर का किराया अचानक बढ़ाए जाने का मामला सामने आने के बाद मुल्क भर में विरोध प्रदर्शन हुए और इसके बाद सरकार ने आवास संकट से निपटने के लिए कई प्रस्ताव तैयार किए हैं। सऊदी अरब की राजधानी रियाद में आज मक्का यूनाइटेड सिक्योरिटी समझौते के सदस्य देशों की एक अहम बैठक होने जा रही है। तुर्की की फॉरेन मिनिस्ट्री ने बैठक की जानकारी साझा की है। बैठक में तुर्की के विदेश मंत्री हाकान फिदान, डिफेंस मिनिस्टर याशर गुलेर शामिल होंगे। इसके अलावा सऊदी अरब और पाकिस्तान के रिप्रेजेंटेटिव्स भी बैठक में हिस्सा ले सकते हैं। ये भाई एक इनका जो मोर्चा बना, सांझा बना है, उसकी बैठक होने जा रही है। हुतियों के बढ़ते तनाव के बीच सऊदी में पाकिस्तान समेत ये देश इकट्ठे हो रहे हैं। ये थे आज के प्रमुख समाचार। समाचार समाप्त होते हैं।
0: This is the Leica Radio Network across London, Manchester and the Midlands. Tasty track of the hour brought to you by Coca Noodles.
2: लौट आइए वापस संगीत की ओर।

स्वागत है आपका मनोरंजन कार्यक्रम के दूसरे दौर में। ये लाइका रेडियो नेटवर्क पर लाइका गोल्ड के प्रसारण आप सुन रहे हैं, लाइका रेडियो मिडलैंड्स और बहन भाइयों बहुत सारे दूसरे माध्यमों से हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है, जहां जहां भी आप हमारे साथ जुड़े हैं। ए वेरी वार्म वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ गोल्डन सॉन्ग्स, बट एट दिस टाइम वी ब्रिंग यू थॉट फॉर द डे। आज का विचार जिसे हम कहते हैं

आज के चिंतन में हम शामिल कर रहे हैं श्री आलोक शर्मा का भेजा आलेख, जो उन्होंने हमें बहरीन से भिजवाया है। दुबई और बहरीन भाई इतना जुड़े हुए हैं साथ साथ कि पता नहीं लगता ये बहरीन में रहते हैं या दुबई में, लेकिन ये कहते हैं कि नहीं, स्पष्ट कर दें हम बहरीन में हैं। और ये भाई टीचिंग प्रोफेशन से जुड़े हैं, बहरीन में ये एक बड़े प्रभावशाली टीचर हैं, वहाँ भारतीय संस्कृति को भी प्रचारित प्रसारित करने में इनका बहुत बड़ा योगदान है। आज के चिंतन में ये हमें याद दिला रहे हैं कि शर्मा जी भूलिएगा नहीं, आज एक खास दिन है। और भाई आलोक जी एक टीचर होते हुए इन्हें तो याद रहना ही था, लेकिन आज वो खास दिन क्या है बता दें आपको, आज विश्व अध्यापक दिवस है, विश्व शिक्षक दिवस, या फिर क्या कहेंगे भाई उसको, योम उस्ताद, आलमी योम उस्ताद, आई डोंट नो व्हाट द उर्दू ट्रांसलेशन कैन बी, लेकिन विश्व शिक्षक दिवस यानी वर्ल्ड टीचर्स डे। यूनाइटेड नेशंस की जो एजुकेशनल संस्था है ना यूनेस्को, उसके अनुसार ये दिन 1994 से मनाया जा रहा है। इसका संबंध 5 अक्टूबर 1966 को टीचर्स की स्थिति और अधिकारों के बारे में यूनेस्को और इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO की महत्वपूर्ण सिफारिश को अपनाए जाने से है। अब साहब आलोक जी हमें याद दिला रहे हैं कि जो टीचर है ना, शिक्षक केवल अक्षर का ज्ञान नहीं देता है, वो जीवन जीने की कला भी सिखाता है। माता पिता हमें जीवन देते हैं, लेकिन टीचर उस जीवन को सही दिशा देने में बहुत बड़ा रोल निभाता है। इसलिए भाई भारत में तो शिक्षक का बहुत

जो एग्जाम देने वालों की लाइन में बैठे हैं वो भी परीक्षा दे रहे हैं क्वेश्चन पेपर लेकर के। तो मैं तो एमए हिंदी कर रहा था, मैंने पूछा सर आप क्या कर रहे हैं, बोले मैं भी एमए हिंदी कर रहा हूं। पर सर आप तो प्रोफेसर हैं, आप यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं और आप ऑलरेडी आप अंग्रेजी के प्रोफेसर हैं। हाँ, तो अब हिंदी भी सीखना चाहता हूं अच्छी तरह से, मास्टर्स डिग्री तुम्हारी तरह मैं भी हासिल करूंगा, और जब ये हासिल कर लूंगा उसके बाद एक और एमए करूंगा। ये पढ़ाई की भूख कभी खत्म नहीं होती है। मैं हैरान था। आलोक कहते हैं प्रोफेसर अवस्थी इतनी बड़ी उम्र में एग्जाम दे रहे हैं, ठीक मेरे पीछे बैठे थे सम्मान से। मैं उनके आगे झुका तो कहते नहीं नहीं हम अभी तो समान स्तर पर हैं, और बल्कि जिस युवक से मैंने हिंदी के कुछ लेसन लिए तो वो मुझसे उम्र में बहुत छोटे थे, पर मैं उनके सामने झुकता था। भाई ज्ञान चाहिए तो झुकना पड़ेगा, थोड़ा रुकना पड़ेगा, अहंकार त्यागना पड़ेगा। मेरे मन में उनके प्रति सम्मान और बढ़ गया। ज्ञान की भूख कभी खत्म नहीं होनी चाहिए। और ये ज्ञान जिससे हम प्राप्त करते हैं ना, सब लोग कहते हैं भाई भगवान सबसे बड़ा है, पर हमारे यहां ये कहावत है कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाऊं। बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए, ईश्वर की तो हमें जानकारी ही नहीं थी अगर गुरु नहीं होते, अगर रास्ता दिखाने वाला नहीं होता तो मंजिल कहां होती, मंजिल का हमें पता ही नहीं था। इसलिए ईश्वर को हम जानते हैं गुरु के माध्यम से, तो गुरु का गौरव और बढ़ जाता है। आज विश्व शिक्षक दिवस के अवसर पर बता दें भारतीय परंपरा में गुरु को बहुत बड़ा माना जाता है, और इसलिए भाई स्टूडेंट्स जो है गुरु के आश्रम में जाकर के पढ़ते थे। आजकल तो फीस देके आप गुरु को घर बुला लेते हैं और पैसे देते हैं, इसलिए गुरु पढ़ाते हैं तो एहसान भी जताते हैं। कई बच्चे फीस देते हैं पर वो किताबें तो पढ़ जाते हैं पर ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाते हैं। याद रखिएगा, गुरु के प्रति अगर सम्मान नहीं होगा तो आपके पास ज्ञान नहीं होगा, किताबी नॉलेज होगी। ऐसे बहुत सारे उदाहरण आते हैं। तो उस्ताद को, टीचर को, गुरु को हम भगवान का दर्जा देते हैं, ईश्वर का। ब्रह्मा भी वही, विष्णु भी वही, शिव भी वही, ज्ञान का भंडार है वो, ईश्वर को बताने वाला सचमुच ईश्वर का अवतार है वो।

0: जो ज्ञान का दान दी जाता है वो जग में अमर हो जाता है। ज्ञान ऐसी पूंजी है, ज्ञान ऐसी दौलत है जिसे कोई लूट नहीं सकता, और भाई लूटे तो आपके पास और बढ़ जाता है, आप उसे बांटे तो आपके पास कई गुना ज्यादा हो जाता है। टीचर जब ज्ञान बांटता है तो और अधिक समृद्ध हो जाता है ज्ञान से। आप भी कोई जानकारी आपके पास है उसे बांटिए, दूसरों को बताइए, देखना आपके पास कैसे खजाना बढ़ता चला जाएगा। आज का चिंतन, आज का विचार भाई, विश्व टीचर्स डे, वर्ल्ड टीचर्स डे, विश्व शिक्षक दिवस, टीचर्स के प्रति सम्मान बढ़ा रहे। भाई बगैर सम्मान के तो आप ज्ञान प्राप्त कर सकते नहीं। आप किताबें खरीद सकते हैं पर ज्ञान खरीदा नहीं जा सकता। आज के चिंतन के लिए आलेख हमें आलोक शर्मा जी ने बहरीन से भिजवाया, जो स्वयं एक टीचर हैं, और भाई हम उनका धन्यवाद करते हैं। और आलोक जी, आप यूएई में और श्रोताओं को जोड़िए हमारे साथ और चिंतन भिजवाइए, स्वागत रहेगा आपका। और भाई भाइयों, हमें ये लोगों के संदेश आ रहे हैं। ये भास्कर भाई नैरोबी वाले कहते हैं, मुझे जब से बताया है भारत गंगाराम ने आपके कार्यक्रम के बारे में, मैं जुड़ गया हूँ, चिंतन सुनता हूँ, अच्छा लगता है, थैंक यू। फतेह पटेल वुल्वरहैम्पटन में, और अरुणा और भूपेंद्र पटेल, नीला चौधरी खुश, थैंक यू वेरी मच, आपका मैसेज आया है। और रंजन, थैंक यू वेरी मच। हाँ, वीरेंद्र चौधरी जी, आप कहते हैं कि भाई आप सुमित जो मशार हैं उनके बारे में बताइए, जिक्र कीजिए। भाई हम कई बार बता चुके हैं, वो जो दुबई फ्लाइट से कैप्टन जो थे फ्लाइट पर, और वो जख्मी होकर के भी उन्होंने किसी तरह से 150 से ज़्यादा लोगों की, 174 लोगों की जिंदगी बचाई। तो कहते हैं कि हम उनके लिए कल हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे लक्ष्मी नारायण मंदिर हांसल में। और कहते हैं कि अब हनुमान चालीसा का पाठ इसलिए करेंगे उनके शीघ्र स्वास्थ्य की कामना के साथ, क्योंकि वो खुद हनुमान भक्त अपने आप को बताते हैं, भाई वो जख्मी हालत में भी हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए इतना बड़ा काम कर दिखाते हैं जिसकी दुनिया भर में चर्चा हो रही है। तो हम भी उनकी प्रशंसा तो करते ही, पर उनके स्वास्थ्य की कामना हम भी करते हैं, शीघ्र सेहतयाब हों, और भाई वो जो है जल्दी हॉस्पिटल से उन्हें छुट्टी मिले। तो आप कल जो हनुमान चालीसा का पाठ वहाँ मंदिर में कर रहे हैं, उनकी स्वास्थ्य के निमित्त आपके साथ हमारी शुभकामनाएं, आपके पूरे मंगल ग्रुप को बहुत बहुत बधाई। और लीजिए साहब, आज का चिंतन समेटते हुए याद दिला दे आपको, चिंतन हर रोज मंडे टू फ्राइडे 11 बजे की खबरों के बाद मनोरंजन प्रोग्राम का हिस्सा बनता है। आज का चिंतन अब समाप्त होता है।
1: चिंतन चिंतन
2: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: SBI UK यानी State Bank of India UK अच्छा रेट दे रहे हैं और आपको याद दिला रहे हैं कि भारत पैसे भिजवाना चाहते हैं तो सही अवसर है, अच्छा समय है और भाई अच्छा रेट है। टुडे दे आर गिविंग फॉर वन पाउंड इन इंडियन करेंसी 127.05 रुपीस, 127 रुपए और 5 पैसे एक पाउंड के बदले वो दे रहे हैं। और बता रहे हैं कि यू कैन ट्रांसफर वाया ब्रांच ऑनलाइन और बाय यूजिंग द योनो SBI UK मोबाइल ऐप, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
2: स्टेट बैंक ऑफ इंडिया UK ऑफर्स सेविंग्स प्रोडक्ट्स, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. Like a radio. One performer.
3: Countless personalities. Yeah!
2: A whole universe of entertainment.
4: Sunil Grover, live UK Tour 2026.
2: 29th October, Ovo Arena, Wembley, London. 31st October, Mattioli Arena, Leicester.
4: From Gutti to Dr. Mashur Gulati. From Rinku Bhabi to brand new surprises. Experience Sunil Grover live on stage in the UK.
2: Produced by ImagineX Global and Tim's Media Productions.
4: Supporting mental health and well-being awareness. Tickets are on sale now via Ticketmaster, Eventbrite and AXS.
2: For more information, contact 07585 801 801. Official radio partner, Leica Radio Network. Make your celebration special with Falcon Festive Offers.
5: Soghat Plain Paratha, 1.6 kilos, 2 for 379. Shankar Grated Coconut, 400 grams, 129. Suhana Son Papri, 400 grams, 2 for 2. Shan Masalas, 2 for 179. Bikano Alu Paratha, 400 grams, buy one, get one free at 199. Hamza Masala Fries, 400 grams, 2 for 250.
6: Or shopping ke saath paye Star Tours ke holiday packages on Malabar Gold and Diamonds ki taraf se gold coins jeetne ka mauka. Falcon Cash and Carry. Visit 82A Syston Street, Leicester. LE12JU. 2A Rollers Hill, Leicester. LE54UN. Or Falcon Supermarket. 135 Carlton Road, Nottingham. NG32FN. Happy Diwali.
7: Sunshine, skyscrapers and souks.
6: For less than you think. This is Affordable Dubai from Southall Travel. We've secured special packages with our top hotel partners.
7: Flying direct with Emirates so you can enjoy three nights from just £629 per person. Whether it's a family holiday, a romantic break or a shopping trip, Dubai has never been better value.
6: Hurry, availability is limited. Travel by the 10th of December. Call us on 0208 843 4444 or visit southalltravel.co.uk now.
7: Southall Travel. Pay less, enjoy more.
6: Southall Travel. At all protected.
8: No need to fly back home this summer holiday. Come to Ambala and try out our Khoya Barfi, made from pure buffalo milk. Yes, it's the same barfi you get back home, now made in England with milk from Ambala's own herd of buffalo. Only from Ambala. Don't take our word for it. Come and taste it for free this month. Now also doing the best gara chai, masala chai and elaichi chai. Just like back at home. Ambala. Heritage you can taste. Visit ambala.co.uk.
9: Yes, we're in the final. I know. I still can't believe it. We're actually going.
10: Flights booked, tickets sorted. But hang on, how are we going to use our phones over there? We'll need them for tickets, maps, photos and obviously sending the celebrations home.
11: Simsy, data in 220 plus destinations with 4G and 5G where available. And we keep our number for WhatsApp and bank OTPs.
10: Exactly. Flat rate, no bill shock and ready in 3 minutes.
11: Come on, let's go win this.
2: Save an extra 10% with code ROMFREE10. Simsy, powered by Leica Mobile. Check if your phone works at simsy.com. Terms apply.
12: Dubai is an opportunity, so now be a part of it. Create wealth with a small investment every month. Danube Properties Dubai has something for everyone with its ambitious 11-11 initiative, aiming to complete 11 landmark projects in just 11 months. Featuring views, oases, oceans, elites, fashions and sports, there's an opportunity waiting for you. So why wait? Be part of Dubai's growth story. Call the Danube Properties Dubai London office today on 0203 963 5757 to arrange your meeting.
2: Save the date. Leica Radio brings you our first ever New Year's Eve bash. Leicester, 31st of December.
13: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free 2025 catalogue today. Call on 0208 507 7900 or download the catalogue from heraldpackaging.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldpackaging.com.
14: Pepe's, famous for flame-grilled marinated chicken, with over 215 stores nationally. Download the Pepe's app, where you can choose to have your order collected or delivered. Delivery is available in selected stores. Every first order on the Pepe's app, customers receive a 10% discount. Plus, a chance to spin to win some fantastic prizes. Order at Pepe's today.
2: Leica Extra Podcast. Be a part of the conversation. Details at leicaradio.com and the Leica Radio mobile app.
15: Leica Radio.
2: Let's return to the biggest hits back to back. This is Leica Radio, broadcasting across the Midlands on DAB Digital Radio with a refreshing mix of Bollywood classics and latest chart toppers. Download the Leica Radio mobile app and listen wherever you are in the world.
16: Tasty track of the hour, brought to you by Coca Noodles.

0: what a song, what a tune, rhythm, संगीत, आवाज। भाई ये संगीत ना होता तो जीवन कितना नीरस होता। ...1964 की फिल्म इशारा से लिया था हमने ये गीत, लता मंगेशकर और रफी साहब की आवाजों में।
1: Leica Radio Network, broadcasting in Greater London, Greater Manchester and the Midlands, with the UK's biggest Asian hits.
0: Leica Group, और भाई इसी बीच कुछ और संदेश आकर रहे हमारे स्क्रीन पर चिपक गए हैं, और इनमें एक संदेश ही आपका है, और मैडम आप कौन हैं? आप मैडम ही है ना? हाँ, अमृता। हम जिसे अमृता कहते हैं भाई नॉर्थ में, और अमृता गुजरात में। तो अमृता जी आप लिखती हैं, रवि जी नमस्ते, बहुत अच्छा चिंतन है, पर आज शिक्षक दिवस नहीं है, 5 सितंबर को होता है। बताऊं आपको अमृता जी, एक बार ना क्लास में टीचर ने मुझसे पूछा, खड़े हो जाओ बताओ 6 और 6 कितने होते हैं? हमने कहा सर 13। 13 कहते बैठ जाओ, थोड़े थोड़े ठीक हो, मतलब बिल्कुल ठीक नहीं हो, थोड़े थोड़े ठीक हो। तो आप थोड़ी थोड़ी, आप काफी ठीक हैं, लेकिन 5 सितंबर को होता है भारत में राष्ट्रीय शिक्षक दिवस, और उसका संबंध भारत की पूर्व राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जन्मदिन से है। वो एक बहुत बड़े टीचर हुए हैं, प्रोफेसर हुए हैं, बहुत बड़े क्या कहेंगे कि भाई वो मतलब बहुत विचारक हुए हैं। तो उनके जन्मदिन पर वो 5 सितंबर का राष्ट्रीय शिक्षक दिवस होता है। आज राष्ट्रीय शिक्षक दिवस नहीं है, आज अंतर्राष्ट्रीय यानी विश्व टीचर्स डे है। तो आप क्षमा करेंगे, आज है विश्व शिक्षक दिवस, पर शिक्षक दिवस नेचुरली भारत में 5 सितंबर को होता है। तो आप ठीक है, थोड़े थोड़े हम भी ठीक है। थैंक यू, बहुत अच्छा लगा आपका संदेश मिला इस बहाने। वैसे ना अमृता जी, मैं सोचता हूँ मुझे कुछ छुटपुट गलतियां करते रहना चाहिए। आज तो गलती नहीं की थी, लेकिन करनी चाहिए, क्योंकि इस बहाने कुछ ऐसे श्रोता संपर्क करेंगे जो वैसे कभी करते ही नहीं है, इस बहाने उनसे बात हो जाएगी, मुलाकात हो जाएगी संदेश के माध्यम से। थैंक यू वेरी मच।
1: Brought to you by Dairy Valley.
2: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: Manu Ranjan, with Ravi Sharma. Like Radio.
1: Like Extra Podcast Update. और आपको बता दें भाई, हमारा नया एपिसोड तैयार है, आप जरूर देखिएगा. वेल, ये एपिसोड नंबर 36 ऑन लाइका एक्स्ट्रा और इसका टाइटल है इनसाइट्स इनटू फोस्टर केयर, होस्टेड बाय रूबी रजा फ्रॉम फोस्टरिंग वर्सेस एडॉप्शन. बहुत सारी बातें भाई, अपनाने, किसी को गोद लेने और किसी की केयर करने और संबंधी जितनी समस्याएं हैं, समाधान हैं और जानकारियां हैं, वो इसमें आपको सुनने को मिलेंगी. हियर डायरेक्टली फ्रॉम फोस्टर केयर प्रोफेशनल्स. जी, तो आप ज़रूर सुनिएगा, देखिएगा, ये उपलब्ध है. लाइका एक्स्ट्रा जो है, it is available on Spotify, YouTube, Amazon, Apple and other major streaming platforms.
2: Leica Extra is here. Get all the latest travel updates for the Midlands at breakfast and drive. Yeah, Leica Radio. Leica Radio.

0: at the Golgappiyan da Pani.
1: All Mamster products are nut-free and made in Canada. Now available at your nearest Asian grocery store.
2: Like a Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan.
1: Creative's team events and Peace Nation UK proudly presents the Virasat Tour UK with the one and only Lakhwinder Wadali on Friday the 16th of October at Crystal Grand Slough. On Sunday the 18th of October at the ICC Birmingham, a memorable Sufi musical with Lakhwinder Wadali and his live band.
3: Book your tickets now on Eventbrite. For sponsorship inquiries, call 07949 250 376.
4: You're both on the same road, same tarmac, same rules, just a different number of wheels. Motorbikes aren't in your way, they're on their way, just like you. So use your mirrors, check before you maneuver, and be aware of motorbikes. Because when we look out for each other, everyone gets where they're going safely. Motorbike safety, it's on all of us. National Highways.
2: From Solihull to Erdington, Leica Radio is now broadcasting throughout Birmingham on full-scale DAB. This is Leica Radio Midlands. One, two, three. Leica Radio, finalist in three nominations at the Asian Media Awards 2026.
5: वाह क्या बात है, क्या बात है भाई। राजेंद्र राज जी कहते हैं, रवि जी आपका चिंतन अच्छा लगा, हैप्पी वर्ल्ड टीचर्स डे। क्योंकि हर एक को अपने टीचर्स का सम्मान करना चाहिए, टीचर को सुनना चाहिए। मैं सुनता हूँ, मैंने कहा हाँ। कहते हाँ मैं तो बहुत सुनता हूँ, सुबह शाम सुनता हूँ, दिन भर सुनता हूँ। मैंने कहा भाई ऐसी कौन है आपके टीचर कौन? कहते मेरी वाइफ, उससे बढ़िया कोई टीचर हो नहीं सकता। मैंने तो अपना वो क्या कहते हैं जो एनसाइक्लोपीडिया था वो भी रद्दी में बेच दिया। और रद्दी खरीदने वाला कहता है जी आप क्यों बेच रहे हो? मैंने कहा अब इसकी ज़रूरत नहीं है, शादी हो गई है, बीवी आ गई है, तो बस सुनते हैं उनको और फिर उनकी तारीफ करते हैं। तुम बेहद खूबसूरत हो, तुमसे ज़्यादा सुंदर दुनिया में कोई नहीं है बेगम।

अर्जुन जी ठीक है ठीक है, ऊपर वाला सब देखता है। ये थाली में डोसा और ये नारियल की चटनी और ये सारी चीजें आपने सजा के भेजी हैं, सिर्फ देख सकता हूँ खा नहीं सकता। आपको भी गाने सिर्फ दिखाने चाहिए, सुनवाने नहीं चाहिए।

क्या बात है, लता जी की आवाज में आपने ये गीत सुना भाई। फिल्म थी छोटी नवाब, वो फिल्म जिसका संगीत तो आरडी बर्मन साहब ने दिया था, लेकिन हीरो महमूद थे, महमूद, जॉनी वॉकर, और भाई कॉमेडी फिल्म थी और इसमें हेलन भी थी। और उस जमाने में कहते हैं कई तरह के इसमें जो है ऐसे गीत शामिल किए गए थे जो भाई अलग अलग सिचुएशंस को रिप्रेजेंट करते थे। लता जी की आवाज़ में ये दूसरा गीत था, और इससे पहले जो प्रोग्राम में पहला गीत कार्यक्रम के अंतिम दौर के पहले गीत को स्वर दिया था मोहम्मद रफ़ी और लता जी ने, दैट वाज टेकन फ्रॉम द फिल्म जीवन मृत्यु। झिलमिल सितारों का आंगन

0: रिमझिम बरसता सावन होगा. That was also a very good song. भाई दो गीत हम back to back परोसते हैं आपको और मुझे यकीन है कि भाई आप को पसंद आए होंगे. याद दिला दूं आपको, my name is Ravi Sharma and I'm with you till 1 o'clock this afternoon. Right now, let's see if there is any change in the bank, SBI, State Bank of India UK's pound rate.
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: State Bank of India UK today giving for £1 in Indian currency, they are giving 127.05 rupees and that's maximum. कहते हैं कि भाई दिस इज द राइट टाइम, सेंड मनी टू योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स इन इंडिया. यू कैन ट्रांसफर वाया ब्रांच ऑनलाइन और बाय यूजिंग द योनो एसबीआई यूके मोबाइल ऐप. टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई.
1: स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यूके ऑफर्स सेविंग्स प्रोडक्ट्स, बिजनेस बैंकिंग, बाय टू लेट मॉर्गेजेस एंड सेफ डिपॉजिट लॉकर्स. विजिट sbiuk.statebank टू लोकेट योर नियरेस्ट ब्रांच. टीज़ एंड सीज़ अप्लाई. लाइक अ रेडियो.

चित्रगुप्त के होनहार सुपुत्र आनंद मिलिंद, दे आर द आर्टिस्ट ऑफ द वीक।

0: गुजरात भी दे दिया, बंबई भी दे दिया। चीची भाई ये क्या कर रहे हैं आप? ए चीची भाई, चीची भाई नहीं सुनते हैं? नहीं सुनते तो हैं भाई, सुनते तो हैं।
1: मैं जब भी लंदन आता हूँ रवि शर्मा जी के प्रोग्राम जरूर सुनता हूँ, बड़ा एंजॉय करता हूँ। वो सिर्फ अच्छा काम ही नहीं करते, इज अ गुड ह्यूमन बीइंग, उनकी स्माइल भी जेन्युइन है। जय माता दी, ऑल द बेस्ट टू एवरीबॉडी। मेरे भाई रवि शर्मा जी को और मेरे जितने भाई बहन, मेरे दोस्त यार लंदन के हैं, सभी को मेरा बहुत बहुत प्यार।

0: खत्म बात, गया ना सारा संसार, ब्रिटेन भी गया। चीची भाई गोविंदा पर पिक्चराइज और भाई आनंद मिलिंद की धुन पर तैयार ये गीत अलका याग्निक और उदित नारायण गा रहे थे। फिर याद दिला दूं आपको कि भाई इस सप्ताह आनंद मिलिंद दोनों भाई जो हैं वो आर्टिस्ट ऑफ द वीक के तहत खूब उनकी धुनें गूंजेंगी, वो खूब छाए रहेंगे।
1: Brought to you by Dairy Valley.
2: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.
0: मौसम खूबसूरत है, बड़ा हसीन मुहूर्त है, तो फिर क्या करें? बस एक खूबसूरत साथी की जरूरत है। क्या करेंगे? प्यार करेंगे।

0: भूलेगा दिल जिस दिन तुम्हें वो दिन जिंदगी का आखिरी दिन होगा हम भी नहीं भूले हैं भाई कुछ बातें हैं ऐसी हैं जो याद आई है एक तो भाई रागासन नाम तो सुना होगा लाइका रेडियो नेटवर्क हैज कंफर्म्ड अ पार्टनरशिप विद प्रीमियम हॉस्पिटैलिटी ब्रांड रागासन डिटेल्स एट laikaradio.com और दूसरी भाई इस वीकेंड पर धूम मचाने जा रहे हैं भूलेगा दिल जिस दिन तुम्हें उस दिन नहीं याद है भाई बिल्कुल याद है कैच द कॉमेडी जीनियस सुनील ग्रोवर लाइव इन लंदन वही इस वीकेंड में नहीं है भाई इस वीकेंड पर तो भजन जैमिंग है सुनील ग्रोवर कब आ रहे हैं ओवो अरीना वेम्बली में थर्सडे 29 अक्टूबर एंड लेस्टर में मैं जो मैटियोली अरीना में सैटरडे 31 अक्टूबर कमाल करेगा ये लड़का भाई हरियाणा का जो है साउथ ऑल ट्रेवल फिर याद दिला रहे हैं भाई कह रहे हैं कि साउथ ऑल ट्रेवल्स अफोर्डेबल दुबई ऑफर कंबाइंस एक्सक्लूसिव डील्स एट सिलेक्टेड पार्टनर होटल्स विद डायरेक्ट फ्लाइट्स विद एमिरेट्स फ्रॉम जस्ट £629 पर पर्सन फॉर थ्री नाइट्स ट्रेवल बाय 10th दिसंबर कॉल साउथ ऑल ट्रेवल ऑन 0208-843-4444 और विजिट southalltravel.co.uk
1: Holiday breaks were brought to you by Southall Travel. Low prices for flights, hotels or holiday packages. Visit southalltravel.co.uk. Get all the latest travel updates for the Midlands at breakfast and drive. This is the Leica Radio Network, the largest Asian commercial radio network in the UK. Broadcasting in Greater London, Greater Manchester and the Midlands. Tune in wherever you are in the world by downloading the Leica Radio mobile app. Listen live or listen back to your favorite shows. Or log on to LeicaRadio.com and listen via the website. If you like what you hear, do tell us. Email us info@LeicaRadio.com. Or you can advertise on the Leica Radio Network by emailing sales@LeicaMedia.co.uk. This is Leica Radio.
2: Make your celebration special with Falcon Festive offers.
3: Annapurna Chakki Atta, 10 kilos plus Foco Coconut Water, 1 litre, just $7.99. Master Chow Hakka Noodles, 140 grams, 5 for £1. Hira Mango Pulp, 850 grams, 2 for $2.79. Suhana Pickles, buy one, get one free. 1 kilo at $2.99 or 400 grams at $1.49. Dawat Extra Long Basmati Rice, 10 kilos, $15.99.
2: Aur shopping ke saath paye Star Tours ke holiday packages aur Malabar Gold and Diamonds ki taraf se Gold coins jeetne ka mauka. Falcon Cash and Carry. Visit 82A Syston Street, Leicester. LE12JU. 2A Rowlett's Hill, Leicester. LE54UN. Or Falcon Supermarket. 135 Carlton Road, Nottingham. NG32FN. Happy Diwali!
4: Are you ready to embark on the journey of a lifetime? Look no further than City Bond Travel. Your trusted local travel agent with an astounding 50 years of experience. From worldwide flights to exotic holiday packages. Captivating group tours, luxurious cruises, and soul-enriching yatras. We've got it all. Call Citybond Travel on 0116 266 6601 or visit our office on 5 Melton Road, Leicester.
5: Dubai is an opportunity, so now be a part of it. Create wealth with a small investment every month. The New Properties Dubai has something for everyone with its ambitious 11-11 initiative aiming to complete 11 landmark projects in just 11 months. Featuring views, oases, oceans, elites, fashions and sports, there's an opportunity waiting for you. So why wait? Be part of Dubai's growth story. Call the New Properties Dubai London office today on 0203-963-5757 to arrange your meeting.
6: London, are you ready? Raghavendra presents to you for the first time legend Udit Narayan and son Aditya Narayan performing live with Bade Mia Chote Mia this December. One date, one show, Sunday the 20th of December at the OVO Arena, Wembley, London. Tickets available now at Ticketmaster and AXS. Visit raga.events. Exclusive radio partner, Leica Radio Network.

मुझे तुमसे प्यार था, आज भी है, कल भी रहेगा, परसों का कोई भरोसा नहीं है। हाँ, आज और कल दो दिन काफी है, परसों फिर जो ठीक लगेगा देखेंगे आगे।

0: आज भी है और कल भी रहेगा। देशराज बसन बता रहे हैं कि भाई गोफी पटेल जी का निधन 5 जून 2023 को मुंबई में 78 वर्ष की आयु में था। जानते हैं गोफी पटेल कौन थे? अगर महाभारत देखा है तो उसमें जो शकुनी मामा थे ना, क्या बात है। अभिनेता और कास्टिंग डायरेक्टर गोफी पटेल जी की भाई 5 जून को उनका निधन हुआ और उनकी जयंती आज है या कल थी 4 अक्टूबर को। गोफी पटेल इनका जन्म 4 अक्टूबर 1944 को लाहौर में हुआ था और वह बड़े मजे हुए एक्टर थे, हालांकि कई फील्ड से गुजर करके वो अभिनय की दुनिया में पहुंचे थे। अब धीरे धीरे हम समाचारों की ओर बढ़ रहे हैं। कौन सा गीत हमें लेकर चलेगा खबरों तक, पर उससे पहले बता दूं कि आज भी है कल रहेगा परसों का कुछ कह नहीं सकते। एक से पूछा, यार तुम्हारी तो शादी होने वाली थी, क्या हुआ तुम्हारी वो मिस? कहते हैं हमारी मिस तो भाई मिस हो गई है। मिस कर दी? हाँ यार, वो तो पैसे की कदरदान थी, वो तो पैसा देखती थी। अरे तो तुमने उसे बताया क्यों नहीं तुम्हारा चाचा करोड़पति है? कहता है बताया था, आजकल वो मेरी चाची जी हैं। गुड आफ्टरनून चाची जी। खबर न थी,
1: खबर न थी, मारा डैडी कौन छे?
0: खबर न थी,
1: मारी मम्मी कौन छे?
0: अबे चाची जी छे।

0: जो भारत के बाद फिर गिरते इंडियन जेल में अंग्रेजी गाने गाए से
1: गुजराती में गाड़ी दे।

अरे वाह वाह वाह वाह वाह, मैंने बहुत रेयरली ऐसे गानों से शुरुआत की है, लेकिन द जर्नी ऑफ लता मंगेशकर जो हमने लास्ट वीक शुरू की थी, मंडे टू फ्राइडे वी स्टार्टेड विद द लेटर ए अल्फाबेटिकली एंड देन वी रीच्ड राइट अप टू एम ऑन फ्राइडे. दीज आर 90 हीरोइंस फॉर हुम लता मंगेशकर हैड संग. एंड काफ़ी तहकीकात करने के बाद ये सब गाने मैं पेश कर रहा हूँ आपके सामने. आज एन से शुरू हो रहा है, लेटर एन. एंड ऑब्वियसली पहला गाना जो था दैट वॉज ऑफ फ्लोरेंस एज़ेकियल. फ्लोरेंस एज़ेकियल, ओके ओके ओके ओके, कोई फरहत एज़ेकियल, फरहत एज़ेकियल. अरे भाई नादिरा, नादिरा, यस, नादिरा के असली नाम जो थे, शी वॉज आइदर नोन एज फ्लोरेंस एज़ेकियल एंड ऑल्सो एज फरहत एज़ेकियल एंड बॉर्न इन बगदाद इन ए जूश फैमिली. सो पहला गाना जो था दैट वॉज संग बाय लता मंगेशकर फॉर नन अदर देन द ग्रेट actress, the beautiful actress who followed it up right up to Julie, and then Julie film mein inko Filmfare award bhi mila tha. And film hai Aan, jahan pe Dilip Kumar sahab ke saath inhone adakari ki thi. And beautiful Jodhpur boots, horse riding attire, great looking woman. And the second song was Nalini Jayavant. That's Thandi Hawaye. And that was a Naujawan film. Naujawan film mein Lata Mangeshkar ji ne unke liye gaya tha 1951 mein. S.D. Barman ka sangeet aur Sahir Ludhianvi ki lyrics thi is film ki. Aage jaate huye, we are gonna follow

0: ये समा समा है ये प्यार का. Of course, everybody knows it's Nanda, Nanda Karnataki. And it's Jab Jab Phool Khile, Kalyan Ji Anand Ji ka sangeet, aur Anand Bakshi ki lyrics. Next bhi Nanda hi hai. Feel Good Track,
1: brought to you by Dairy Valley. Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
0: मजे की बात है कि किसी को पूछना नहीं पड़ता, जैसे ही गाना शुरू होता है यू नो के द एक्ट्रेस इज नंदा. लेकिन मोस्ट चार्मिंग पार्ट ऑन इन द थ्री आवर्स इज तीन घंटे आप गाने सुनोगे एंड एवरी सॉन्ग हैज लता मंगेशकर इन इट एंड सी द वेरिएशंस ऑफ ईच सॉन्ग दैट शी हैज प्रेजेंटेड. आई मीन अब तक मैंने आई थिंक 50 गाने आपको सुना दिए है ऑलरेडी. And you can see the variations. Wohi dekhna hai humko in the next 3 hours. How Lata Mangeshkar has changed her voice and how she has modulated her voice and how she has adjusted according to the demands of the song. Aur Ye Sama, it was a seductive song, beautifully sung. And yes, the music, the lyrics, everything justify it. But Lata Ji is Lata Ji. जो गाती है कोयल की आवाज़, द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, आई मीन शी रियली रियली जस्टिफाइड एवरी सॉन्ग शी सैंग इन हर लाइफ. सो दैट्स व्हाई आई एम गोना ट्रीट यू टू अ सॉन्ग ऑफ धरती का है पुकार के. नेक्स्ट वन सॉन्ग बाय लता मंगेशकर फॉर नंदा.
2: ये है लाइका रेडियो. टेस्टी ट्रैक ऑफ द आवर ब्रॉट टू यू बाय कोका नूडल्स.

0: दत्ताराम का ठेका ऑफ कोर्स शंकर जयकिशन का संगीत फिल्म बरसात 1949 लेकिन वी आर टॉकिंग अबाउट लता मंगेशकर सिंगिंग फॉर नन अदर देन निम्मी रियल नेम नवाब बानो एंड डिड यू नो नीतू सिंह का असली नाम हरनीत कौर
1: From West Midlands to East Midlands, this is Leica Radio Midlands.
0: निमी के बाद आती है निरूपा रॉय. निरूपा रॉय के लिए लता मंगेशकर ने ये गाया था जन्म जन्म के फेरे से.
2: सामने तो आओ चलिए.
0: Of course, with रफी साहब.

0: And this is Nirupa Roy, for whom Lata Mangeshkar sang songs. काफी दूसरी फिल्में भी थी इनकी, लेकिन the nearest one I found was this one. There was another film called Laadla. ये थी जन्म जन्म के फेरे. बाज रही शहनाई, वो भी एक अच्छा गाना था जो लता जी ने गाया था उनके लिए. For Nirupa Roy. And next.
1: This is Like a Gold across Greater London.
0: Nutan. Yes, so many songs we can play of Nutan ji. Wo chand khila, wo tare haseen, film Anari. फूल तुम्हें भेजा है खत में, वो भी तो आ सकता था. बहुत सारे गाने हैं, लेकिन आई चूज दिस वन फॉर यू.

0: लता मंगेशकर की हर अदा लाजवाबी. वी आर प्रेजेंटिंग लता मंगेशकर ऑन लाइक अ गोल्ड, प्रेजेंटिंग 90 सॉन्ग्स फॉर 90 हीरोइंस इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर. दिस इज नन अदर देन पद्मिनी, जिस देश में गंगा बहती है. नेक्स्ट इज पद्मिनी कोलापुरी, फिल्म सौतन.
1: इज लाइक अ रेडियो अक्रॉस द मिडलैंड्स.
0: लाइक अ गोल्ड प्रेजेंटिंग लता मंगेशकर्स 90 सॉन्ग्स फॉर 90 हीरोइंस इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर. दिस इज लेटर पी एंड दिस इज पद्मिनी कोलापुरी, फिल्म सौतन 1983. जस्ट लिसन टू लता मंगेशकर. The previous song was in the year 1960 and this is 23 years later in film Sautan. None other than the greatest Lata Mangeshkar.

0: राजेंद्र सिंह कलरा जी के लिए मैंने ये गाना सुनाया, बेदर्दी बालमा तुझको मेरा मन याद करता है। तो स्वीटी जी ने कहा कि क्यों रोते हो, मैं तो घर पे ही हूं आपके साथ। That was so so funny.
1: Tasty track of the hour sponsor by Coca Noodles. More flavors, more convenience, more yum. Grab your Coca Bowl today.
0: Okay, here we go with the Saira Bano. Yes, you got a treat. I'm gonna play two songs. This one and the last song with Rafi Sahab. Saira Bano.

0: सबसे निराला मैपस्टर पानी पूरी और पानी पूरी का पानी.
1: All Mapster products are nut free and made in Canada. Now available at your nearest Asian grocery store.
2: Save the date. Leica Radio brings you our first ever New Year's Eve bash. Leicester, 31st of December.
3: Here's Alex, pedalling off to work. And here's Nikki, driving off for a morning coffee. You know the drill, Nikki. Allow at least 1.5 meters when overtaking cyclists, or more if driving over 30 miles per hour. And for horse riders, like Joe on Daisy here, slow down to under 10 miles per hour and allow at least 2 meters. Whoever you meet, travel like you know them. Think, follow the highway code and let's help keep everyone safe. The highway code rules may vary in Northern Ireland.
4: स्ट्रीट फूड का असली मजा लो क्वालिटी स्ट्रीट फूड लेस्टर पर. ट्राई कीजिए क्रिस्पी पानी पूरी, स्पाइसी वड़ा पाव और डिलीशियस पाव भाजी. सब कुछ फ्रेश और टेस्टी. लाइट खाना है तो हमारे चीजी सैंडविचेस और किड फ्रेंडली ट्रीट्स ट्राई कीजिए. तो मिलते हैं 62-64 बेलग्रेव रोड, LE4 5AS. कॉल ऑन 0116-332-5100 और मेन्यू ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं. क्वालिटी स्ट्रीट फूड लूटन एंड वेमली में तो है, लेकिन अब असली इंडियन फ्लेवर्स लेस्टर में.
2: Tamworth to Albury. Leica Radio is now broadcasting throughout Birmingham on full-scale DAB. This is Leica Radio Midlands.
0: Diamond Track of the Hour is sponsored by Malabar Gold and Diamonds, the responsible jeweler committed to value, quality and transparency. That's a Malabar promise.

0: Falcon Basanti. Falcon Cash and Carry. Visit 82A Syston Street, Leicester. LE12JU. 2A Rowlett's Hill, Leicester. LE54UN. Or Falcon Supermarket. 135 Carlton Road, Nottingham. NG32FN. Falcon Basanti. Har khane ka taj.
1: Celebrate Diwali at the iconic Royal Albert Hall.
2: Join legendary singer Kavita Krishna Murthy.
1: Live on Sunday the 1st of November. An unforgettable evening of spectacular Bollywood and devotional songs
2: with the Royal Philharmonic Concert Orchestra.
1: Get your tickets from royalalberthall.com and sanathanevents.org. Brought to you by Sanathan Events.
2: Exclusive radio partner, Leica Radio Network.
3: यूरोप और यूके के सपने देख रहे हैं तो मंत्रा हॉलीडेज के साथ ट्रैवल कीजिए दिल की धड़कनें बढ़ा देने वाले स्कॉटिश हाइलैंड्स स्नोडोनिया के अफसानवी लैंडस्केप्स और स्टनिंग कोस्ट ऑफ कॉर्नवॉल को एक्सप्लोर कीजिए आपका सफर होगा मैजेस्टिक स्विस एल्प्स से लेकर रोमांटिक पेरिस और टाइमलेस ब्यूटी ऑफ इटली के थ्रू
4: विजिट mantrahollidays.co.uk और कॉल 02037736333 नाउ एप्टा बॉन्डेड मंत्रा हॉलीडेज व्हाट्स योर travel mantra

0: बेस पसंद,
1: बेबी को बेस पसंद है। जमाना ऐसा है कि बेबी बाबा बहू सबको ही थोड़ा सा बेस पसंद है। It's past 7, good evening, you're tuned in at Salaika. Whether you're joining us in Greater London or the Midlands, 14:58 AM, DAB Alexa, Google Home, Laika Radio.com, that Laika Radio mobile app. Sabka swag se swagat ho, baby.

0: Falcon Cash and Carry. Visit 82A Syston Street, Leicester. LE12JU. 2A Rowlett's Hill, Leicester. LE54UN. Or Falcon Supermarket. 135 Carlton Road, Nottingham. NG32FN.
1: वेडिंग सेलिब्रेशंस कॉर्पोरेट इवेंट्स रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए फॉरन का फोन मिलाएं 02088390880 और विजिट ragasan.com लोकेशन डिजाइन मैनेजमेंट या केटरिंग रागासन
2: खाकरा क्रंच भाकरी मंच चिक्की स्वीट पापड़ बीट पिकल्स हीट ये है जैमिन फूड्स का वाइब चेक
3: ऐड देसी तड़का टू योर रूटीन विद जैमिन फूड के वैरायटी ऑफ स्नैक्स खाकरा नमकीन पापड़ पिकल्स चिक्की पॉट मील्स एंड मच मोर
2: जैमिन फूड्स देसी क्रेविंग्स अवेलेबल एट नियरेस्ट एथनिक ग्रोसरी स्टोर्स
4: Save the date. Leica Radio brings you our first ever New Year's Eve bash. Leicester, 31st of December. From Sutton Coldfield to Handsworth, Leica Radio is now broadcasting throughout Birmingham on full-scale DAB. This is Leica Radio Midlands. Are you listening? Leica Radio is now available across Birmingham on DAB.

0: इट्स फूड ट्रेंडिंग ट्रैक ऑफ द वीक शाकोशा की आवाज ये प्रेम मोलिया टाइम नाउ द समथिंग हटके समथिंग बचके लेट्स टेक यू आउट ऑफ दिस वर्ल्ड विद अ लेजी लव स्पेशल
1: टाइम फॉर रेडियो वाली टू टेक यू आउट ऑफ दिस वर्ल्ड With a lazy lounge special.
2: Like a radio.
0: और ये गाना तो हम आपके नाम करते हैं क्योंकि आपकी दोस्ती के बिना रह ही नहीं पाते हैं